God with his gratitude. If indeed we serve the same God,

निश्चिंत होते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य इस तरह निश्चिंत नहीं जी पाता? क्योंकि उसे न तो दूसरों पर भरोसा है न ही खुद पर, और जहाँ भरोसा ही नहीं वहाँ कैसी राहत? खुद पर और उस परम पिता पर भरोसा ही

ठीक हो जाता है प्रकृति के समीप और हम आत्म

पर पौधा गाड़ी से संगीत सरिता मिश्र ने विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बात की। 7 बजे से धीरे दिखेगी। बजकर 30 मिनट से हम है रही प्यार के 8 बजे से समाचार प्रभाग। आज तक 15 मिनट से नहीं हुए हैं। 12:30 मिनट से चित्र लोक और 9:30 मिनट से आज के संचार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। 10 बजे से सुन सकते हैं बॉम्बे टॉक न्यूज का पुनः प्रसारण। गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12 बजे से हिंदी में समाचार। 12:05 से यादों की महफिल। 1:00 बजे त्रिवेणी सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं और 2 बजे से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण सुनेगा। 2:15 से 2:00 समाचार। 2:30 से सुनिए सदाबहार लगने मन चाहे गीत कार्यक्रम का समय है 3 बजे का। नाट्यकरण कार्यक्रम सुन सकते हैं 3:30 से। आज सुनिए नाटक सजीला रास्ता का दूसरा भाग। मूल तमिल लेखक है निशा मूर्ति, हिंदी अनुवाद किया है ए सॉरी राजन ने, निर्देशन बी पी दीक्षित प्रतीक का। शाम 4 बजे उजाले एम पी यादव के कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर की हिंदुस्तान की बातचीत की दूसरी कड़ी प्रस्तुति की श्रीकांत की। 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 से

प्रतीक में से भरोसा सेंटर जाकर आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। शाम 6:35 से संधारण जल, 6:45 से संगीत कविता के अंतर्गत सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। शाम 7:00 विशेष जयमाला सैनिकों की चरिता था। इस श्रृंखला में आज सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज बैंड से प्ले लेक्चर गिटार के साथ होंगे ये कलाकार हैं आज के। लड़ी नजरिया लड़ी ये घर के सुन सकते हैं रात 8:00 से हवा महल में लेखन राजेश भदौरिया का निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। कुछ लोग रात 8:15 से 8:45 से समाचार संध्या 9:00 से सुनिए आपके लिए ये कार्यक्रम। 9:30 से आज के संकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल रॉय पर। छायागीत का प्रसारण होगा 10:00 से। 10:30 से ढलती जाए रात और 11:00 से विविधा। आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे घरों के अंतर्गत आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की विविध धड़कन श्री राम चरित मानस सुनिए

संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरे के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं है,

0: प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंटवार्ता, आइए सुनते हैं।
1: संगीत चिंता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सिया व्यास। व्यास जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: व्यास जी, आपके षष्ठीपूर्ति समारोह में श्री पी एल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
2: हाँ, वो तो बात ठीक है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
1: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तारीख प्रारंभ कब से की?
2: 10 साल से शुरू किया, 10 वर्ष से, लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना

सोचता था, तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मैं मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं मुंबई आया फिर मेरा उम्र था 18 साल की, और तब मैंने ग्वालियर ग्वालियर ध्यान करा गरम वापस कर, जो कि मेरी बहू जो कह रहा था कि गरम वापस कर, तो छोड़ दिया। ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में समृद्ध गायकी है। उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में अनेक ख्याल गा सकते हैं, कोई गायक आए वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि वो जंगल राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक वृद्ध ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, वो तो 15-15-20 ख्याल के रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे। ग्वालियर घराने का उपजम भी था उसके बारे में भी ये अपना कि बहुत उपजान तो हर घराने में होती है, हर कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजान क्या होता है वो समझना बड़ा, जिसके ग्राम में समझाते हुए इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़े

0: tu kao ve. Ali se mi je jer sam taj tip on upač ka je što ka pun da. Da kedar mi je ja. Mama re sa re sa re re sa. Mama re sa re sa re sa sa. Ali je chota ho gaya isliye lene ka. Jab uski kaan banti hai. Mama re sa re sa re re sa sa. Mama re sa re re sa re re sa sa. Mama re sa re re sa re re sa sa. ये ऊपर है ना वो हमेशा के लिए ऐसा रूल था ये नियम था वो गारंटी जब एक ऊपर चालू गया तो ऊपर की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए जब ऊपर की पूर्तता हो गया तो गवाले घराने में भी आलाप और पहले सब बातें और आलाप बोल आलाप पहले बोल आलाप फिर बोला कि कुछ कहानी कुछ
1: ध्यान देता था
0: ख्याल तो याद करना बड़ा होता है ख्याल तो पहले अगर बालर ग्राम में पहली ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पर बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश थी वो उसकी स्थाई दो दफे गा के लिए बाद में अंतर है दो दफे गाए फिर उसके बोल आराम जो भी कुछ गाने का ढंग होता है और उस ढंग से चले गए बिना ख्याल पूरा गा के तभी वो गाना चालू नहीं करते अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं
1: जैसे कि ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक

एक बात बताना पड़ेगा मुझे, जगन्नाथ बाबा पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास जो है, तो आगरा घराने में तो तालीम पाया जो खाता है उगा विजय कृष्ण का साहब के पास बहुत सारे सिक्के थे, लेकिन मैं जब वहाँ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की लाइफ में सीखना चाहिए, लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि वो बहुत बहुत भावनिक गाते थे खुद हुआ था जो, तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अब इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना का हो क्या होता है, और ये ग्वालियर में नहीं था आगरा में नहीं था तो ये तो बताने की बात है, हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है ये ग्वालियर का पेटा नहीं रहता, वो सब गाय के ऐसी गाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की गाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे कुछ ऐसे गाते जाएंगे लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है, जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: इस बात को मैंने ज्ञान देके और ये अपना के पास आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और सब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय करके नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखें तो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए तो संगीत आ जाती है। वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, मैंने बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज आज के जो तरुण कलाकार हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे गाने वाले हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसे पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट है मेरे सबके सामने और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा अच्छे से हमारा देश बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, वाई है, जरूस है, बहुत अच्छे गाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए, देखना चाहिए हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं। आपकी बातचीत में इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना, ये सब बातों पर ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे अपने गुरु से सीखते लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं तो ये तो बात चलेगी। शिवा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बड़ी खुशी हुई, नमस्कार आपका, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता, भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुत करता थी छाया गांगुली। आज पंडित सी आर व्यास हमारे बीच नहीं है परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंट वार्ता में सुने और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित सी आर व्यास का गाया राग बिहार, बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा

सेंटर आपको बताएं।

Awesome. It's going to be a couple of times.

0: जैसे पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ सस्टेनेंस विद अ डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए तो काफी हद तक हमारी बीमारी
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता.
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी

Dr. Muhammad Rafiq की आवाज से मजमू सुल्तान के लिए बोल ओपी में निर्देश की कार्यक्रम भी लेकर के भी विविध भाषी पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुबारक बेगम की आवाज में लिखी है रिश्ता फिल्म से पंडित सानी ने लिखा

চশমা কি দিয়ে

confessing these.